रजिस्टर कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकूजी एंड विलियम्स पार्क वे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 and 10 ब्रांटन। टेलीफोन 905-799-9400।

सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुन गा भवनत राम के ए अवखद जोग आए बसों का देश में।

रोग शीतल मन पया गुर पूरा हरा दिया सगला दुख गया राधन हर राधिया अपनी कर मया रहा बात पकड़े प्रभु का अपनाया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बिलावन भला पंजो रोग मिटाया उपजा सुख साथ बट पता बचन रूप हर की निदान गुरु गोविंद कृपा करी रखिया मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय रहा विपरी कदे ना हो भाई जन की।

सुख साथ सहज आनंद पै पूर्ण पैसे रहा भक्त जना की बेनती सुनी प्रभया रोग मिटाए जीवा ने जाता मन प्रताप तो हमारे भगवान अपनी कंधारी

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने पिसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड इटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165
1: जी हाँ, एक आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आपके लिए अभी हालांकि वो जो ओंटारियो में जंगली आग जिसको कहते हैं वो जारी है, तो उसकी वजह से धुआं जो है स्मग है उसकी वजह से, और सीनियर्स को खास करके अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को पानी पीना चाहिए खूब सारा, और अंदर घर के भी कितना देर रह सकते हो फिर भी कोशिश करिए अपने आप अपना ख्याल रखिए। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है अभी, तो पहले आपको बता दें कि आप अगर फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का टीवी बढ़िया गैजेट किचन में लेके आना चाहते हो, लेटेस्ट एडवांस आपको टीवी चाहिए, आपको बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बढ़िया प्राइस बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलता है, और आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट मॉडल मौजूद है। एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 9057990045। आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब आपके लिए मास्टर कुरियन डिपो लंदन में खुल चुके हैं, खुलेंगे बहुत जल्दी, ओपनिंग होगी। तो अगर आपका कलिजन का काम हो किसी तरह का भी, तो आप masterkollision.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। लंदन के आसपास के इलाके में आपको किसी किस्म का भी कलिजन का काम करवाना हो तो आप मास्टर कलिजन डिपो पे जाइएगा, आपको हर तरह की बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी, बहुत बढ़िया प्राइस भी आपको मिलेगी, तो आप मास्टर कलिजन डिपो में जाइएगा। और अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है किचन वाटर वॉल्फ में, तो आप निशिफेंड को कॉल करिएगा 8056-1265-9546-1260। घर लेने के बाद आपको मूव भी होना पड़ता है, तो मूविंग के लिए एचके मूवर्स बहुत बढ़िया, उनकी बहुत सारी टीम्स हैं कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-704 पर कॉल करके 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

झाजे लता जी का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा गीत है आपके लिए। तो अब और भी बहुत से बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाएंगे, रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बढ़िया बढ़िया गीत लेकर के आपके लिए, मनोरंजन बढ़िया सा लेकर के। तो अब आपके लिए आजकल समर है तो सड़क पे आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि बहुत सारे बैड ड्राइवर्स हैं, एकदम आपके सामने आ जाते हैं, आपकी टाइमिंग एकदम खराब कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप अपने कार के आगे काफ़ी सारी जगह खाली छोड़ के चलो तो अच्छा है, तो बहुत सारे ड्राइवर आपको हॉर्न देंगे, आपको पुश करेंगे, लाइट्स फ्लैशिंग लाइट देंगे कि जल्दी जल्दी चलो, आगे आगे जाओ, यू नो। तो आपको आपका टिकट या आपको कोई तकलीफ हो गई वो तो नहीं झेलेंगे ना, इसीलिए फिर आप इस तरह की चीज़ को जो है इग्नोर करें और सड़क पे रोडवेज ना करें, गुस्से में ना आए। और साथ में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं सड़क पे एक्सीडेंट्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप ने टर्न बना ली तो वो जो आगे वाला होता है वो अचानक खड़ा हो जाता है और आपको तो टर्न बनानी ही है क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको शक है कि जो आगे वाला आपके कार वाला वो थोड़ा फनी तरीके से पेश आ रहा है तो आप टर्न बनाए ही ना, लाइट की वेट कर लें, अगली बार लाइट हो गई तो फिर आप टर्न बनाना अपनी सेफ्टी के लिए। और फिर दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को किसी से हमदर्दी नहीं कि जो एक्सीडेंट स्टेज करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आपको अपने आप को बचाना है। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि समर टाइम है तो सभी का मन होता है कि बाहर घूमने निकलें, सर्दियों में तो अंदर ही बैठे रहते हैं कि चलो जरूरत नहीं है तो मत जाओ, अपने जो भी आपने लेना हो तो आप अपना ट्रिप प्लान करके जाते हो। तो ये आपको अगर आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है, बढ़िया बारबेक्यू चाहिए, इतना थोड़ी सी सेटअप करवानी है, तो ये सारा कुछ आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड्रॉइड को रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। उनके स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 905-799-0045। और अब आपके लिए समोसा आइसक्रीम फैक्ट्री एलबीएम पर मौजूद है, उनके वहाँ बहुत सारा सामान बिकता है, जहाँ पे सामान बहुत बिकता हो तो आपको खाना जो होता है फ्रेश मिलता है, चाहे मिठाइयाँ हो चाहे खाना हो, बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। तो आपके लिए अब बहुत बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो 1715 मिस्सी सगा में मौजूद है बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055 9056250055 पर कॉल कर सकते हो। आपने आपके लिए खुशी की खबर है कि अब मास्टर कॉलेजन डिपू लंदन में खुलने जा रहा है, तो बड़ी ग्रैंड ओपनिंग होगी तो आप जरूर जाइएगा और अपनी कार का जो भी आपको कोई काम करवाना हो तो कॉलेजन का काम तो आप मास्टर कॉलेजन डिपू पर जा सकते हो लंदन में आसपास के इलाके में भी। अब आपको अगर किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ लेनी है, खाना लेना है बढ़िया, तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट ब्रिटानिया ग्रैंड दूसरे मौजूद है, और जानकारी के लिए 905-844-1780 पर कॉल करो, 905-814-1730 पर न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट को कॉल कर सकते हो। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए, उनकी बहुत सारी टीम है आपके सामान को हिफाजत से पहुँचाएंगे, कनाडा भर में मूव करने में मदद करते हैं। तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए मूविंग के लिए 416-524-704 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको ये एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं।

जी हाँ, एक बार फिर से प्रोग्राम घर संसार उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए और भी बहुत प्यारे प्यारे से गीत सुनाते रहेंगे आपको। रात को भी 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो अब अगर आपने फ्रिज स्टोव लेना है, वाशर ड्रायर लेना है, फिर आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, टीवी बढ़िया से चाहिए, किसी को गिफ्ट लेके देना है, शादियाँ आजकल बहुत हो रही हैं, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर काम पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। एक लोकेशन उनकी आपके लिए इंटर मॉडल एंड एको रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना चाहते हो, कुछ वासिंग बैंस को कॉल करो 416-6773-4167-1313 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और बहुत ही नटखट सा गाना मैंने चुना है, सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: जी हाँ, लता जी का उषा मंगेशकर जो गाया हुआ जो गीत था तो आजाद फिल्म आई थी उसी का, ये दिलीप कुमार उसमें थे तो उनकी तो फिल्म कमाल की थी जितनी भी है। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, आप और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको जिन्होंने ये गाने सुने थे पसंद किए थे, हमने उनको उनकी पसंद प्ले कर दी है। आपको अगर कोई गाना पसंद है तो आप घर संसार रेडियो @gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। जो आपकी कोई पिकनिक है, अभी समर में बहुत सारी पिकनिक हो रही हैं तो जैसे हैमिल्टन मंदिर वालों की भी पिकनिक है मेरे ख्याल कल है, तो आप जरूर उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। तो हैमिल्टन मंदिर वालों की पिकनिक है। अब आपके लिए अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। अब और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं आपके सामान को फादर से पहुंचाते हैं, और अपना ट्रक बुक करने के लिए मूविंग के लिए 416-524-4 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पे कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको एक और बहुत ही आरजू फिल्म का ये गीत सुनाती हूँ। आरजू फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म थी 1965, उसमें महमूद थे। आपको मौका मिले तो जरूर देखना।
1: फूलों की रानी,
0: मौसम हर तरफ फूल खिले।

जी हाँ, उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो अब आजकल समर है, बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे कई बार सड़क पे खेल रहे होते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा जब भी आप गाड़ी चलाइएगा। और हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हो तो जो आसपास में देखिएगा ट्रक वालों का, उनसे डिस्टेंस रखिएगा। और फिर आपको अगर कोई जैसे किसी भी मौके भी आपको गाड़ी जो है ना अपना ध्यान से चलाइएगा। तो अब मौसम थोड़ा गर्मी है, तो जो आप अपने आप को खूब पानी खूब पीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो अब आपके लिए एक और गाना बहुत ही प्यारा सा सुना है, पर पहले आपको बता दूँ, अगर आपने लड्डू जिलेबी या समोसे बढ़िया मिठाइयाँ लेनी है तो आप समोसा स्वीट फैक्ट्री एलजीएम पे जाइएगा। उनको ऑर्डर बुक करने के लिए 416-213-1105 पर कॉल कीजिए, 416-213-1165। अगर आपकी कोई पिकनिक होने वाली है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, खाना ऑर्डर करना है, तो समोसा स्वीट फैक्ट्री वालों से करिएगा। आपको एकदम फ्रेश खाना, बढ़िया खाना मिलेगा। अब आपके लिए ये गीत पेश है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट नीरा।

बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो मुझे पक्का यकीन है आप जैसे मुझे ये गाने सुनकर के बहुत ही बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है, आप भी जरूर बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे ये गाने सुनकर के। तो अब आपके लिए पंजाबी का गीत सुनाते हैं मिस पूजा का। जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, गर्मी है तो पानी खूब पीजिएगा, अपने आप आसपास में गाड़ी चलाइएगा तो ध्यान से चलाइएगा, बच्चों को छुट्टियां हैं तो सड़क पे आप ध्यान से जाइएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने मिठाइयाँ लेनी है, लड्डू ले दिया तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पर आप जाइएगा। आपको फ्रिज तो वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाइए। तो आपने मूव होना है तो इसके मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7004 पर कॉल कर सकते हैं। मास्टर कलीजन की प्रू आपके लिए खुशी की खबर है, आप लंदन में खुलने वाले हैं तो आपको सेवाएं देंगे। कलीजन की हर तरह की सेवाएं आपको लेनी हो तो मास्टर कलीजन की प्रू पर जाइएगा। अब मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पारे सुहागा पला, हैव ए वंडरफुल डे। कल रात को भी आपकी सेवा में हाजिर, आज रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लेके, आपका मनोरंजन करने के लिए, आपके साथ समय बताने के लिए। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पारे सुहागा पला, हैव ए वंडरफुल वीकेंड। जो भी है आप जरूर वॉक के लिए जरूर जाइएगा। तो और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे घर पे बैठे चेयर पे ही क्यों ना कर लें, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखें। अभी समर में तो ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत जरूर हिले जुले, अपने शरीर को फिट रखें, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो इसीलिए आप जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम अपने लिए बनाएं, एक्सरसाइज का प्लानिंग करें। तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: आई आपका स्वागत है मैं संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा खेल दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है आई एग्जाम आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेस सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकोसी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5555 कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।
2: लो जी कमाली फिर अपना टेस्ट भी कल कर लेते हैं।

0: taste, a product of Samosa and Sweet Factory at all Indian grocery stores.
1: अब हमें वो रखना शरीर बताए हो मैं कर राती मत नहीं करे वो पाती नहीं तो राम नाम विचार नान रूप नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव है माँ उदार कभी सती है अगन माही हो मत प्राण है कनक अश्व है मत भूमदान न्योली कर्म करे वो आसन जैन मार्ग संयम साधन निमक निमक कर से कटावे तो भी हो मैं मेल ना जावे हर के नाम संसार कछ नाहि नान गुरुमुख नाम जपत कर पाए मन कामना तीरथ दे छुटे गर्व भगवान ना मन ते उठे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न कम ते जात इस देही को वो साधना करे मन ते तो न विख्या करे जल तो है बहुत अनेक शुद्ध का हो काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पत बहुमोच बहुत सियान जमता बहु व्याप है अनेक जतन करते समाधाप है एक अनेक अगर नहीं बुझे फूट पाप कर गहनी से जाए छूट स्नायु पयान मोय व्याप है माया जान अवर कद्दू सगरी जमदान है गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान है हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुवाए चार पदार्थ जी को मांगे साजना की सेवा लागे जी को अपना दुख मिटावे हर हर नाम विदय समझावे जे को अपनी शोभा दूर है सात संग ही हो मैं छोड़े जे को जन्म मरण दे डर है सात जना की सदनी पर है जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानका के बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान है सात संग जाता मिटा विमान आप उसको जो जाने नीचा सो गनी है सबसे ऊंचा जाका मन हो सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेक है सगल सृष्ट साजना सुख दुख धन समृष्टिता नानक पाप पुण्य नहीं ले पा निर्धन को धन तेरो नाव निखावे को नाव तेरा खाओ निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देवो दान कर्म करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत निज जानो आपे आपन संग आप प्रभु दाते तुमरी उस्ता तुम ते होए नानक अवर ना जान सोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साथ संग दुर्मत मन हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जा सुन रसन खानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक निर्गुनियार ज्ञानिया सो कर सदा समान जिनकी आतिश चीत रख नानक निधिनार अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोगन भोजन सुख सोध बिल पया ऊपर साक्षैन मुख पिया बैठ को गैन इन दिन गुण गुण कठिन बूझ है बख्श ले उठो।

छन्दः श्री विचित्रवीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे मारा मंत्र जपे विनियोगः अथ करन्यासः ॐ नाम अमुष्टाभ्याम नमः ॐ रीं गर्जनीभ्याम नमः ॐ रूं मध्यमाभ्याम नमः ॐ रीं अनामिकाभ्याम नमः ॐ रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः।

जय जय रासि मोहिनी राशेश्वरी रस वर्धी के जय जय काम्यामृत मद खंडिनी रूपवती मद मरदी के जय जय केशिनी शोदन तर्षिनी भाव शेष विभूषी के जय जय पूर्णानंद मुकुट मणि बिंब धर रस पूर्ण।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है। तो अब आपके लिए ये जो जुलाई का महीना है, ये भी आधे से ज्यादा निकल गया। तो आपने जो भी अपनी जिंदगी में 7 महीने साल के निकल गया, मतलब कि आपने जो भी पहले इस साल में कुछ भी अचीवमेंट करने का सोचा था, आप उसमें कहाँ तक पहुंचे हो, आप जरा चेक कर लीजिए, अपना कैलेंडर देख लेना। रात को सोते हुए, सवेरे जागते हुए अपना याद करो, शाम को सोते हुए फिर याद करो कि मैंने क्या करना है, अपने टाइम को कैसे यूज करना है, बढ़िया तरीके से यूज करना है, ताकि अपने इस साल में कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर हो। जैसे कि मैंने अभी फैसला किया कि मैं ना म्यूजिक सीखूंगी। पहले मैंने एक और कोर्स भी किया है इस साल, छोटा सा, छोटे छोटे कोर्सेज किए हैं, लेकिन उनका जो कई बार छोटी छोटी चीजें सीखने से भी आपकी जिंदगी आपको बेहतर लगने लगती है, आपको लगता है एक और आपके दिमाग में एक और चीज आप सीख गए हो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें सीखो। अब मैं म्यूजिक सीखना शुरू करने वाली हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। तो बिजी बहुत हूँ, समझ में नहीं आता, बस एक दिन मैंने चुन लिया है। वैसे कौन से दिन मैंने क्लास लगानी है, एक हफ्ते में एक दिन, 4 क्लासेस महीने की। और फिर मैंने ना, अगर मैंने म्यूजिक की क्लासेस लेनी है तो फिर मैंने जैसे यूट्यूब सारे लोगों ने सारे गामा पा और वो सभी कितने तरह के राग हैं, जो वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पहले से सीख रहे हूँ, लेसन शुरू होने से पहले। जैसे कि मैंने जैसे सारे गामा पा दा नीसा, तो मैंने ये देख लिया कि सा और पा और मा वो आगे फ्रंट वाले जो लिप्स होते हैं वहां पे से आवाज निकलती है। तो रे धा नी, ये जो तीनों स्वर हैं, 7 स्वर हैं, तो फिर ये जो तीनों हैं वो आपके तालु के ऊपर लगते हैं। तो फिर गा, ये जो है तो ये आपका गले से निकलता है आवाज। तो बाकी सारे जो राग हैं, अलग अलग राग हैं, उनके बारे में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पहले से थोड़ा अपने आप को मेंटली जैसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आजकल तो अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उसको पहले यूट्यूब में ट्रोल करके, तो उसके बारे में जो शुरुआत के उसके स्टेप्स हैं वो आप थोड़े थोड़े सीख लें, तो फिर आपको सिखाने वाले को भी मजा आएगा कि आगे जो स्टूडेंट है वो मेहनत करने वाला है और तैयारी करके बैठा है कि जो भी उसने सीखना है, आपको जो भी सीखना है तो इस तरह करिएगा। जैसे कि मैंने पहले कोई और कोर्स लिया था तो उसकी भी मैंने यूट्यूब में देखती थी कि लोग और दूसरे और कहाँ कहाँ पे वो कोर्स मिल रहे हैं और वो क्या सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उसकी भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई थी, तो वो मैंने देख ली। उनको देख देख के अभी रोज मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। उसका भी जो कोर्स पूरा कर लिया मैंने, उसको दोबारा से सारा प्रैक्टिस करती रहती हूँ रोज ना। तो उसमें मैंने ये किया कि जो पुरानी नॉवल है, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसकी जो फेमस कोटेशन थी वो मैंने रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल दी, जैसे जो मैंने सीखा उसको इस्तेमाल करते हुए। तो आइए आप सभी श्रोताओं का घर संसार में एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बात कर रही थी कि अगर आपको कोई अपना टाइम देख लीजिए, आपने कैसे कैसे बताना है। तो इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे भी बिल्कुल नहीं करेंगे आपके टाइम की वैल्यू, इसलिए आप जरूर अपने टाइम की वैल्यू कीजिएगा। आप बात करते हैं, अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स नई वाली चाहिए, या फिर आपको किसी किस्म का भी आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और उनके स्पेशल देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। जी हाँ, तो अगर आप अपने कोई आपने आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि मास्टर कुरियन दीपू अब लंदन में खुलने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया आपको सर्विस देंगे। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, उनका बहुत सालों का तजर्बा है, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। वो रोड पे उनकी लोकेशन है लंदन में, मास्टर कोलिजन डिपो। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी बहुत सारी टीम है और आपके सामान को बड़े हिफाजत से ले जाते हैं। और जानकारी के लिए आप HK मूवर्स को 416-524-704 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी तरह की भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए मौजूद है 1715 सिस्मत रोड मिसिसागा में। तो वहां पे आपको, आप उनको और जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो 905-625-0055। आपने वेज नॉन वेज किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है, आपने लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए न्यूली रेनोवेटेड ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-814-1303 पर कॉल कीजिए, 9058141730 पे आप न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट वाले को कॉल कर सकते हो।
1: माझा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर,
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
1: माझा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। उम्मीद रखती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। ये महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ, सुनील दत्त माला सिन्हा के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। कभी कभी जब आप एक रिश्ते में बहुत लंबे टाइम तक होते हैं तो फिर ऐसा ही सोचना चाहिए जैसे

हाय कौशिक से आपका स्वागत है घर संसार में। जी हाँ, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी बढ़िया लेना है, बैक डोर, आउटडोर फर्नीचर चाहिए या फिर किचन गैजेट्स चाहिए लेटेस्ट, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरे लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-00549 0045।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब अगर किसी ने वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ना सिर्फ चिंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे। आपने सिर्फ चिंड को कॉल कीजिए। अब आपने मूव होना है तो आपके लिए मूवर्स, एचके मूवर्स आपके लिए बहुत बढ़िया मूविंग सर्विसेज देते हैं कनाडा भर में। और आप उनको कॉल कर लीजिए 519-416-524-4416-524-6704 पे। आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो बस एक बार आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 एचके मूवर्स। तो अब आपको गीत एक और ये अभी आपको सुनाती हूँ, राहत फतेह अली खान का। ये एक बहुत ही खूबसूरत उनकी जो एक कॉम्पोजिशन है।

0: फिर से आपका स्वागत है घर संसार में।
1: आए आप आए गरीब खाने पर, आप आए गरीब खाने पर, सच तो ये है मुझे यकीन नहीं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है और बढ़िया किचन के गैजेट्स आपको चाहिए तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। और अगर आप लंदन में रहते हो तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए मौजूद है। तो किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो गोर रोड पे मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर अब उनकी बारी लंदन में और जानकारी ले सकते हो। तो अब आपके लिए किसी किस्म के भी उनको आप कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है। तो आप और जानकारी के लिए उनके वेबसाइट पे जाइए और पता कर सकते हो और जानकारियां ले सकते हो कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेंगी उनके पास। तो आप उनको उनके बारे में जान लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने किसी किस्म की भी मूविंग आपको करनी है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। HK मूवर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्विसेज देते हैं। तो 416-4607-04। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि आजकल बहुत सारे लोग जो एक्सीडेंट स्टेज करते हैं आपके आगे आकर के जस्ट करके आप लेफ्ट टर्न बनाते हो तो बस लेफ्ट टर्न बना के रुक जाते। अगर आपको कोई उनका पैटर्न थोड़ा सा हो जाता है कि जगह जगह पे वो अचानक अगर आपको ऐसा लगे तो उस कार से आप पीछे ही रहे क्योंकि अपनी सेफ्टी आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो किसी का खड़े हैं उनका ज्यादा उनको होने वाला इस चीज करके तो भी नहीं होती और किसी भी। तो आइए आपको एक बीरबल अकबर की एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। बीरबल की विनोद प्रियता और बुद्धि चतुर्या ने न केवल अकबर बल्कि मुल्क साम्राज्य की अधिकांश जनता का मन मोह लिया था। लोकप्रिय तो बीरबल इतने थे कि अकबर के बाद उन्हीं की गणना होती थी। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे पर शायद जिस गुण के कारण वे अकबर को परम प्रिय थे वह गुण था उनका उच्च कोटि का विनोदी होना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे परंतु उनके असली नाम महेश दास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर अब तिकवापुर के नाम से प्रसिद्ध है कि निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे लेकिन उनकी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस अद्भुत सफलता के कारण अनेक दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। बीरबल सेना नायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु वैशालु विरोधियों का परिणाम थी। बीरबल की मृत्यु के समाचार से अकबर को कितना गहरा घात पहुंचा था इसका परिणाम है उनके मुख से कविता के रूप में निकली ये पंक्तियां। दीन जान सब दीन एक दुरायो दुसह दुख सो हम सब को दीन। कुछ नहीं राख्यो बीरबल अकबर के लिए बीरबल सच्चे सखा सच्चे संगी थे। अकबर के नए धर्म दीन ए लाही के मुख्य अस्तारा अनुयायियों में यदि कोई हिंदू था तो वो थे अकेले बीरबल। तो ये थी बीरबल के बारे में आपके लिए एक जानकारी। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगी ये बीरबल के बारे में जानकारी क्योंकि उनकी कहानियां बहुत लोग जानते हैं लेकिन ये जो एक तथ्य सच था उनके बारे में ये मैंने

0: ऐसे दो चले होके मजबूर हमें याद रखना।
1: आप सुन रहे हैं घर संसार रेडियो, तो उम्मीद रखती हूँ कि आराम सुन रहा होगा। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमारे प्रोग्राम का समय तकरीबन

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

हम छूटे तुम आराधे जो हम बांधे मोहफासा हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे।

अब कह करहोगे ऐसी रहा मीना पकड़ फांकियो और काटिया रांद कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीना तौ न बिसरियो पानी अपन बापा नहीं किसी का पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापिया भगत नहीं संताप कह रवदास भगत एक बाडी अब एह कास्यों कहिया जा कारण हम तुम आराधी

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiyan nikiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 G Media Group।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: चंगी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत चंगी सलाह नाल होंदी है, ते ऐदां दी सलाह तुसी हर किसी तो नहीं ले सकते। इस करके रीमैक्स गोल्ड रियलिटी दे हरजिंदर गिल नाल अज ही गल करो। चाहे तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी भाल विच हो, प्रॉपर्टी बाय और सेल करना चाहुंदे हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स विच इन्वेस्टमेंट या लुकिंग फॉर रिटेल यूनिट्स, तां तुसी बिल्कुल ठीक ना सुनिया है। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next hot deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
3: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
4: दोस्तों स्वागत है तुहाडा एक बार फिर रेडियो रम्स पंजाबी वीकेंड शो दे विच, ते मैं प्रभजीत बुपारा तुहाडा एक बार फिर स्वागत करदा जी। ते दोस्तों 2 बजे तक तुसी 647-468-62 647-400-6862 हरजिंदर गिल साहब का नंबर है, तुसी तां टैक्सट मैसेज करना, वट्सअप ना करियो, टैक्सट मैसेज करना 2 बजे तक। उहदे वास्ते 3 फैमलियां नूं असी मनमोहन भाजी नाल, कमलीर भाजी नाल ते संगतार भाई नाल, उन्हां नाल मीट एंड ग्रीट का मौका मिलेगा जी। तुसी 3 लक्की फैमलियां दे विचों हो सकदे हो, ते जरूर जरूर उन्हां नूं टैक्सट मैसेज करो, ते असी तुहानूं 2 बजे तो बाद वो 3 लक्की विनर जिहड़े क्वालीफाई कीते ने असीं उन्हां नूं मैसेज करांगे जां उन्हां नूं कॉल दे थ्रू करांगे, क्योंकि नैक्सट वीक साडा पंजाबी विरसा 2026 ट्रांटो शो होण जा रहा जी, जुलाई 25th सैचरडे नूं, ते उहदियां लिमिटेड टिकटां अवेलेबल ने, बहुत थोड़ियां। जे तुसीं बल्क दे टिकटां लैणियां तुसीं मैनूं वी कॉल कर सकदे हो 647-706-3800, जिहदे विच कुछ तुहाडी सेविंग हो सकदी आ, ते तुसीं हरजिंदर गिल साहब नूं कॉल कर सकदे हो 647-400-6862। अदरवाइज़ तुसीं ticketmaster.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਆ ਜੀ, ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਥੀਏਟਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ 1 ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਚਰਡੇ ਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-233-7368 416-233-8297। कुछ कॉल आई सी, सॉरी मैं अदर किसी होर लाइन पर बिजी से चुक नहीं सकता, मैं कॉल आंसर नहीं कर सकता, तुसी दोबारा कॉल कर सकते हो। तो जिहड़ा साडा 3 लक्की फैमलियां जिहड़ियां असीं जिन्हां विनर कढ़ना जी 2 बजे तक, उहदे वास्ते तुसी जे उस कंटेस्ट दे विच जे तुसी हिस्सा लैणा, तो तुसी सिर्फ एक मैसेज करना 647-468-62 जिहदे विच तुहानूं मनमोहन भाई नाल, कमलीर भाई नाल ते संगतार भाई नाल मीट एंड ग्रीट का मौका मिलेगा जी। अज सिर्फ अज तक अवेलेबल है जी, अज दोपहर के 2 बजे तक। इस वेले समा 1:40 हो गया जी, तो 1 घंटा 20 मिनट रह गया, तो तुसी जरूर मैसेज ते कॉल करो, ते मिलते हैं जी 1 म्यूजिकल ब्रेक तो बाद।

किसी भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्लान ले हरजिंदर गिल होरे नाल संपर्क करो 647-400-8832। इस अलावा विजिटर टू कैनेडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपरविजन इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स, बेस्ट प्लान, बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हमें कॉन्टेक्ट करो 647-400-8862 बारे जानने के लिए 647-400-8862 हरजिंदर गिल।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474088 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: कुछ नहीं कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं 30,000 से 100,000 की फंडिंग आपकी जो बनती है, जिसका हाफ पोर्शन आज की डेट में भी आपको ग्रांट के रूप में मिलेगा. अगर आप हमें अभी कॉल करेंगे, ऑफिस आएंगे आप इस कमिंग वीक, आप कल भी ऑफिस आ सकते हैं, तो फंडिंग हासिल करें एंड पीछे ना रहें.
1: सो जेडी तो मान लो जी, जे कोई एलिजिबल आ 40,000 ग्रांट ली जेडी सरकार ने उन्होंने खाते च पानी है, वह तो चलो वापस करनी नहीं, वह चाहे बंदा किदा मर्जी, वह तो कोई कैप नहीं है कि वह आही परपज ले यूज होनी चाहिए, तो बंदा किदा भी यूज कर सदा, राइट?
0: बिल्कुल जी, गवर्नमेंट आपको कहीं भी खर्च करने की.
1: हाँ, सो ये तो होगी ग्रांट जेडी 40 वापस नहीं करना. जे 40 लोन भी ओह ले लेंदे ने, वो लोन भी 1.5 साल तक मोड़ना नहीं हैगा, 1.5 साल तो बाद मोड़ना स्टार्ट करना, तो ओदियां किश्तां भी किन्नी क बनदी है जे 40,000 दा आपां 10 सालां च मोड़ना होवे जी?
0: जी, सो इसमें फैमिली ऑफ 4 को अप टू 80,000 की फंडिंग आती है, उसमें से $40,000 ग्रांट है, $40,000 ऑप्शनल लोन है. हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, जो कि असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, बेसिक इंग्लिश इनको आती है. ओके, अब इस केस में इनको 40,000 की तो ग्रांट भी नहीं, जो वापिस ही नहीं करना. जो रेस्ट $40,000 है 0% पे 1.5 साल तक, और जब आप वापिस करना शुरू करते हैं ना उस लोन को 1.5 साल बाद, अगर आपकी जॉब ना लगे, कोई फाइनेंशियल हार्डशिप है, गवर्नमेंट आपका लोन डेफर कर देती है 1 से 3 साल तक. चलो आप अभी पे ऑफ कर रहे लोन, 400 किस्त बनेगी, उसमें से ब्याज होगा $38 बस, क्योंकि 2.5% साल का ब्याज है, तो मतलब 40,000 का 4,000 ब्याज है. $40,000 पे 4,000 का ब्याज है, 15 साल में आप उसे पे कर सकते हैं. लोन ऑप्शनल है, गारंटी ले लीजिए अगर लोन से डर लगता है तो.
1: ਵਾਜੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਸਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ $80,000 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ?
0: ਦੇਖੀ ਜੀ, ਹਮ ਕਿਸੇ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਿਲਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਮਾਨ ਕੇ ਚਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਾ ਕਾਮ ਹੈ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਹਮਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ $199 ਜਾਂ $499 ਹੈ. क्लाइंट के अकाउंट में फंडिंग अगर आज ज्वाइन करते हैं कोर्स को, तो विद इन 30 से 90 डेज में गवर्नमेंट उनके खाते में डायरेक्ट फंडिंग डाल देती है, तब हमारी फीस आप देते हैं अपनी ईमानदारी से. तो ईमानदारी आपकी चेक हो रही है, हमारी नहीं हो रही, हमने तो ट्रांसपेरेंट रखे.
1: तो पहला काम हो खाते च $1,000 आएंगे, इस तो बाद तुहानू असी 199 या $499 पे करने हैं, दैट्स ऑल.
0: दैट्स ऑल, आपका फायदा हाथी जितना हमारा फायदा चीटी जितना, कोई मीठी बातें नहीं है, नहीं है, नहीं है.
1: नागपाल जी, एक होर दस्सो, जेडे मैटरनिटी लीव ते ने ओ ऑलरेडी गवर्नमेंट तो जेडी ओ आ रही है, पर ओ देखा जाए फैमिली इनकम दे विच तां 70,000 तो घट ही बनती है, ते ओ भी फिर एलिजिबल आ?
0: सेम केस मेरे घर का ही है. अच्छा. वाइफ भी पढ़ रहे, वही मैटरनिटी पे है, सेकंड बेबी हुआ अभी, तो उसमें लाइक वो भी पढ़ रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर चुके हैं. फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं जी, 3 घंटे लगाने हैं एवरीडे आपने. कुछ कोर्सेज ऐसे जिसमें टीचर ही नहीं है, सेल्फ स्टडी है, वो तो बहुत ही आसान है. इसलिए उनकी फीस हमने 499 रखी है, वन टाइम फीस. तो इसलिए आप हमें कॉल करेंगे.
1: कोर्सेज इतने सौखे हैं भी अटेंडेंस ते असाइनमेंट दे सिर ते बंदा पास हो जाता, कोई टेस्ट भी नहीं है.
0: बिल्कुल जी, टेस्ट नहीं है, नहीं है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए. दैट्स इट.
1: हमारे जो मैटरनिटी लीव ते ने, जे उन्ना दी इनकम घट आ, वह भी एलिजिबल ने. जेडे बजुर्ग पेंशन ते ने, उन्ना दी इनकम भी 70,000 तो घट बनती है, इंग्लिश उन्हां नूं आउंदी आ, वह भी एलिजिबल ने. अच्छा, सिंगल मदर ने जेडे, वह भी एलिजिबल ने?
0: बिल्कुल जी, अब लास्ट वीक जैसे 32 बदलों की फंडिंग उनके खाते में डायरेक्ट गिरी थी, उसमें से 6 सिंगल मदर ही है.
1: सिंगल मदर आ, उन्हां दी इनकम मान लो $50,000 आ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਇਨਕੀ ਰਹੇਗੀ $28,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀ, ਔਰ $17,000 ਲੋਨ ਕੀ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਕੀ, ਔਰ ਅਗਰ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ $40,000 ਫੋਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ $40,000 ਫੋਰ ਦਾ ਲੋਨ.
1: ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰੋ. 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ PR ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਨਕਮ 70,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਬੈਚ ਆ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ 3 ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਹ ਔਖੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਸੌਖੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ. ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 199 ਜਾਂ 499 ਨੇ, ਨੰਬਰ 437-264-3175

0: ਇਕੱਤੀ ਪਚੱਤਰ 437-264-3175। ਅੱਛਾ ਲੋਨ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਤੇ ਚ $80,000 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਚ ਹੋਵੇ ਜੀ?
1: नहीं जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तुम बताते, आपने आज कोर्स ज्वाइन करा, गवर्नमेंट आपके खाते में 30-90 days में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल देती है। आपके खाते में फंडिंग दो इंस्टॉलमेंट में डालती है गवर्नमेंट, एक विद इन 90 days, एक 90 days जो खत्म हो गए पहली जब किस्त गिर गई आपके खाते में, उसके 5 महीने के बाद दूसरी किस्त आपके अकाउंट में आ जाती है। अब ऐसा भी नहीं पैसे आप आज अप्लाई करें कल आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं कोर्स होने के बाद आएंगे। गवर्नमेंट आपको कोर्स के दौरान लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब उस फील्ड में करनी है, बल्कि जो लोग एक कोर्स कर चुके हैं दूसरा कर रहे हैं। अभी हमारे कल में जो ऑफिस से बाहर निकल रहा था, अंकल आए तो वो साल पहले एनरोल हो चुके थे। अब मैं बोला अंकल जी आप कैसे हैं? आपने कह रहे वाइफ को कराने आया हूँ, अब खत्म होने वाला है तो मेरी वाइफ को भी डाल दो। और जब उनकी अप्रूवल एक दिन में ही आ गया, जस्ट इमेजिन, तो इतने खुश थे वो, राइट। तो जो लोग कोर्स कर रहे हैं वो करे जा रहे हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो पक्का रह ही जाएंगे जब आपकी गवर्नमेंट इतना पैसा यूक्रेन को दे देती है। देश का डेफिसिट $60 बिलियन, यूक्रेन को दिया $30 बिलियन, तब तो आपको हैरानी होती नहीं है। जब गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट कर रही है तब कान खड़े जाते हैं। हम सिर्फ इसी फंडिंग में डील करते हैं। फंडिंग का नाम सुन के यस चौंकना चाहिए, बट यहाँ कुछ भी क्या कह सकते हैं, कैच नहीं है, कुछ हिडन नहीं है, सिर्फ एडुकेशन की सिंपल सी फंडिंग है। कॉल करें, अभी कॉल करें, ऑफिस आए, प्रॉपर ऑफिस है महसागा में, हर अंटारी डेरी पे, कोई भी कुंडी नहीं है इसके अंदर।
0: सो दोस्तों कॉल देते इन्होंने तुम दस देना कि तुम एलिजिबल हो, किन्ने पैसे लिए एलिजिबल हो, जे एलिजिबल हो फिर जाके। अच्छा यह जी डॉक्यूमेंट किन्ने के चाहिए ने, थब्बा चाहिए डॉक्यूमेंटा दे?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये तो भूल ही गए बताना। ओके, इसमें आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट लगता है 2024 का।
0: Okay.
1: अभी अकेडमी का चल रहा है 25-26, इसमें 24 का एनएवए लगता है, नंबर वन। नंबर टू मैरिज सर्टिफिकेट, नंबर थ्री आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट। ना कोई आपके घर के कागज लगते हैं, ना कोई आपका क्रेडिट चेक होता है, ना कोई कोलेटरल है, ना कोई सिक्योरिटी है इस फंडिंग में। मतलब हर कोई पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम कम है, तो इसमें बड़ा ईजी है ये। कोई इसमें आसान से आप स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, एक पंथ दो काज। और एक बार बता रहा हूँ, आपके आस पड़ोस वाले गवांडी सब दोस्त ले चुके, आपको बता नहीं रहे, पूछोगे तो शायद बता भी दें, बट इसलिए पीछे ना रहो, क्योंकि आप अपना 37,000 का नुकसान ही करा रहे हो, क्योंकि सब लोग ले चुके हैं।
0: तो ग्रांट बंद हो रही है हुन?
1: बिल्कुल जी, एक हफ्ता लगे बंद, उसके बाद हमारे हाथ में तो है नहीं, गवर्नमेंट की
0: नंबर बोल
1: दो, एनरोल करें।
0: नंबर बोल दो,
1: नंबर जी 437-264-3175, 437-264-3175। उन्हें कॉल करो, ऑफिस तो कल खुला है, उन्हें कॉल करो, एस्टिमेट लो 437-264-3175,
0: 437-264-3175। दोस्तों कॉल कर सकते हो, ताड़ा होर कोई क्वेश्चन आ बिना देरी किए, क्योंकि मैसेज तुम लंबे टाइम तो सुन रहे सी, अविसले सी, तो हुण देरी ना करो, अविसले पुना छड़ के राइट नाउ कॉल करो। सिर्फ कॉल ही करनी है, तुहानू इन्हां ने जे दसता कि हाँ जी तुसी एलिजिबल हो, तुहाडे खाते च 60,000-70,000 आ सकदा, तो वाई नॉट, पैसा भी आऊगा, तुसी अज्ज स्किल भी अपडेट कर सकदे हो, तुहाडे कोल इक एजुकेशन भी होजू, ते तुहाडे सनहरी भविख दे विच उह होर भी वधिया जिहड़ा रोल निभा सकदी आ। सो बिना देरी किए सारी जानकारी लई, जो कि ग्रांट ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 437-264-3175। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।

0: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
1: हर एक जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर एक आरजू को जुबा नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों, एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।
2: तुझे

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: कल्चर ऑफ पंजाब।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 that's 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

आप सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कई बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $50 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव ताकले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदी हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद, which you'll listen in your very own show, Culture of Punjab, brought to you by Devdatta।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32, 55, 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: बाप जी मेरा बिजनेस नहीं चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

वेल, इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यहीं खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609। With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: है
1: जी
0: तो इसका कोई बुरा फल नहीं।
1: जी जी अजकल दे जमाने च नहीं तो कोई बहुत पैसे लेके भूल जाता है, इन्होंने 100 डॉलर भी याद ने, बहुत वधिया गल है। तो तुसी इन्हें दान कर सकते हो जी। जी अजय जी ऑन एयर है तुसी, अजय वडेरा जी,
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी।
0: 17 सितंबर 1964 जी,
1: 17 सितंबर
0: शिमला।
1: 1964 शिमला, ठीक है जी। टाइम दस दो,
0: अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 6 विच है जी।
1: 5-6 के बीच बीच, ठीक है जी। की पूछना
0: हाँ जी,
1: चाहते हो सवेर का है
0: मैं
1: तुम्हारा?
0: पूछना चाहता जी, मेरे को थोड़ा जा अपग्रेड करना चाहता, मकान थोड़ा बड़ा लेना चाहता है, कद तक काम बन जाऊगा
1: ठीक है जी, दस दिने जी, सुनते रहो प्रोग्राम नू जी।
0: जी। जिस तरह के सेकंड भाव दे शनि आया होवे, मकान करना होवे, तो जिस दिन मन बन जावे उस दे 4 महीनों के अंदर अंदर अपग्रेड हो जाता है। अगर वेच के करना है तो हुण चंगा समय हैगा, आपां अपना पुराना घर वेच के भी आपां नवा घर लै सकते हाँ, हुण समय सही हैगा। ये हो जाए उस दे लई की उपाय कीते जा सकते ने? पक्के बादाम। पक्के बादाम का मतलब होंगे कि जिन्हों के उपर शैल भी हो, जिन्हों आप एक तो कागजी बादाम होंगे ने, एक बहुत हार्ड शैल वाले बादाम होंगे ने, अजकल पंजाबी स्टोरों के उत्ते आके आ जाते हैं, क्योंकि बिहारा के नेड़े या अगे दिवाली के नेड़े वो जरूर आते होंगे ने।
1: जी
0: तो इस करके उसमें किसी भी धार्मिक स्थान के उत्ते दे देने, एक पाइया तो लैके 1 किलो तक अगर चढ़ा देने, खास करके शिवलिंग ते, तुहाडा ये जिहड़ा काम है बहुत ही छेती ते वधिया ही तरीके नाल स्मूथली हो जाएगा।
1: जी ठीक है जी। 3631 ऑन एयर हो तुसी, सत
0: हेलो, सत श्री अकाल मैम जी।
1: श्री अकाल जी।
0: मैं बफलो तो बोलता जी, अमरजीत।
1: जी
0: ते
1: ठीक है
0: मैं
1: जी
0: अपने बेटे बारे पुछना है, विआह दे लगन बारे, कोई ठंडा जिहा चल रिहा ना।
1: जी। अपने बेटे दी डेट ऑफ बर्थ दस दो।
0: अक्टूबर 2, 1995।
1: ठीक है जी, 2 अक्टूबर 1995। टाइम दसो जी।
0: टाइम 10:30 का सवेर का।
1: 10:30 सवेरे, ठीक है जी। बर्थ प्लेस,
0: ते नाम है? हाँ जी,
1: बर्थ प्लेस, जन्म कित्थे होया जी उन्हां दा?
0: इहदा बफलो जी है जी।
1: ठीक है जी। तुसी हुण पूछना चाह रहे हो उन्हां दी मैरिज बारे सवाल जी?
0: हाँ जी, मैरिज बारे सवाल, नाम ही चाहिए तुहानू? नाम
1: नहीं जी। ठीक है जी, असीं तुहाडे
0: ठीक
1: सवाल का जवाब दिंदे हां, तुसी फोन कट के रेडियो ते ही प्रोग्राम नूं सुनदे रहो जी।
0: जी। लगन दे विच बैठा होया मंगल, इस टाइम 7वें भाव दे विच मंगल ते राहु कठे आ के बैठते ने। आ वाला साल तां रिश्ते की कोशिश भी करांगे ते सिरे नहीं चढ़ना। 52वें साल दे विच बृहस्पति चंगा आवेगा, केंद्र दे विच आ के बैठेगा, फिर रिश्ता जिहड़ा सिरे चढ़ जाए, यानी कि 2 अक्टूबर तो बाद जो प्रयास किए जाणगे उह सफल होणगे, कामयाब होणगे, ते वधिया रिश्ता जिहड़ा है उह सिरे चढ़ जाएगा। क्योंकि लगन का मंगल कई बार साढ़े इस काम के देरी पाता है। दूसरा, सूर्य बुध न मिलकर शुक्र को खराब करता है, जिहड़ा कि बच्चा जिथे अपना मन सी उथे भी विआह उसका नहीं हो सकता। 52वें साले शुभ चढ़ेगा
1: जी। 2609 2609 तुसी पूछ सकते हो अपना सवाल।
2: हेलो, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1994।
1: 8 जनवरी
2: जन्म मेरा, जन्म
1: चौरानवे
2: मेरा शाम का, जिला हुशियार जिला नवांशहर का जन्म।
1: नवांशहर
2: मैं पूछना सका कि PR दे बारे पूछना सका कि मैं जिदा कोई बन नहीं रहा, जां मेरा इत्थे हैगा अगे, जां मैनू वापस ही जाना पऊगा इंडिया।
1: जन्म का समय थोड़ा जा दसोगे तुसी? किया वा कि शाम नू टाइम थोड़ा जा,
2: शाम प्रॉपर नहीं पता, अराउंड 6 दे हो सकता, अराउंड
1: 6
2: पक्का नहीं पता,
1: 6 बजे दे कोल कोल। ठीक है जी, ठीक है जी, तुहाडे सवाल का जवाब दिंदे आ, सुनदे रहो प्रोग्राम जी।
0: जी, कुंडली दे 11वें भाव दे विच बैठा होया केतु आ, बार बार रिजेक्शन होण तों बाद भी अगर हिम्मत नहीं छड्डी जांदी, नवे नवे रस्ते फिर लभ ले जांदे ने, ते कामयाबी होण दा चांस हुंदा है, क्योंकि 34 साल दी उम्र तक कोई भी रस्ता हथ नहीं आउणा, ना कामयाबी मिलदी है। अगर 34 साल पार करा दोगे ते तुहाडा इत्थे ही रहण दा योग है। 34 साल दी उम्र तों पहलां अगर कोई रस्ता नहीं खुलदा वापस जाना पड़ेगा
1: जी। 4723 ओने रो, 4723।
3: हेलो
1: जी, पूछो जी, की पूछना चाहते हो जी? डेट ऑफ बर्थ दसो जी। तो डिना आवाज क्लियर नहीं आ रही हैगी।